नमस्कार, 22 जून के महक कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, आदर है, अभिनंदन है। घर में अगर बच्चों की चहक हो और अच्छा संगीत हो तो घर में खुशियों की महक फैल जाती है। ऐसे ही महक फैलाता है आपका अपना कार्यक्रम महक। अच्छे मनोरंजन का वादा लेकर एक बार फिर हाजिर हुआ हूं, सुखदेव जसवाल। आज के कार्यक्रम में पेश करूंगा आपके लिए मजरूह सुल्तानपुरी जी के गीत। मजरूह सुल्तानपुरी जो बनने गए थे एक हकीम, लेकिन बन गए एक गजल लेखक और गीत लेखक। आपकी फरमाइश पेश करूंगा। अपनी फरमाइश यहाँ स्टूडियो में पहुंचाने के लिए बहुत ही आसान है। फोन उठाइए, नंबर घुमाइए 02-9816-2777, 9816-2777। कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा ऑनलाइन सुन सकते हैं www.rr.org.au, लिसन ऑनलाइन प्ले बटन, और अपने मोबाइल पे भी सुन सकते हैं www.rr.org.au। नीचे आ जाएगा महक, उस पर कीजिए क्लिक, और इसके अलावा आप एक मुफ्त ऐप, फ्री ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, कम्युनिटी रेडियो प्लस। कम्युनिटी रेडियो प्लस ऐप डाउनलोड करके मैं अपने प्यारे दोस्त मोबाइल के साथ जहां भी हों सुन सकते हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम महक।

माफ कीजिए इस गड़बड़ के लिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है महक 2RRR 88.5 FM पर अपने मनपसंद कार्यक्रम महक में, जो आपके लिए पेश किया जाता है हर इतवार 2 से 4 बजे तक। पेश करता हूं मैं सुखदेव जसवाल। 22 जून के महक कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, आदर है, अभिनंदन है। अच्छे मनोरंजन का वादा लेकर एक बार फिर हाजिर हुआ हूं सुखदेव जसवाल। आज के कार्यक्रम में पेश करूंगा आपके लिए मजरू सुल्तानपुरी जी के गीत। मजरू सुल्तानपुरी जो बनने निकले थे एक हकीम, लेकिन बन गए गीत लेखक। कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा ऑनलाइन सुन सकते हैं www.RRR.org.au पे लिसन ऑनलाइन प्ले बटन। अपने मोबाइल पर इसी तरह सुन सकते हैं या फिर एक फ्री ऐप, मुफ्त ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, कम्युनिटी रेडियो प्लस। कम्युनिटी रेडियो प्लस ऐप डाउनलोड करके अपने मोबाइल के साथ आप जहां भी हों अपना मनपसंद कार्यक्रम महक सुन सकते हैं। आज कार्यक्रम में पेश करूंगा आपके लिए मजरू सुल्तानपुरी जी के गीत। तो अपनी फरमाइश के लिए बहुत ही आसान है, स्टूडियो का नंबर है 02981622777, 02981622777।

कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए मुझे सुखदेव जसवाल को बहुत ही खुशी है। मजरू सुल्तानपुरी, जिनका जन्म हुआ उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में, असरार उल हसन खान, असरार उल हसन खान के घर, जिन्होंने जिस के नाम से उनका जन्म का नाम था असरार उल हसन खान, असरार उल हसन खान, दुनिया ने उन्हें जाना मजरू सुल्तानपुरी के नाम से। पिता ने स्कूल की जगह उन्हें मदरसे में डाल दिया पढ़ाई के लिए, और मदरसे में उन्होंने 7 सालों तक पढ़ाई की, और उन्होंने धर्म, अरबी, फारसी, इस सब का ज्ञान प्राप्त किया। और उसके बाद वो लखनऊ में, वो लखनऊ के तकमीलुत्तिब कॉलेज में पढ़ने लगे, जहां उन्होंने पढ़ाई की, हकीमी की। उसके बाद उन्होंने हकीमी शुरू कर दी, लेकिन हकीमी में उनका दिल थोड़ा कम लगता था, तो वो खाली समय में गज़ल लिखने लगे। सुल्तानपुर के एक मुशायरे में एक गज़ल सभी ने बहुत पसंद की। हकीमी छोड़ दी और गज़लें लिखने लगे, जिगर मुरादाबादी के शागिर्द बने, मुशायरों में हाजिरी भरने लगे। 1945 में बॉम्बे आए एक मुशायरे में, उस मुशायरे में एक दर्शक थे, सुनने वाले थे, जो वो थे फिल्म प्रोड्यूसर ए आर कारदार। उन्होंने उन्हें सुना और कहा कि वो फिल्मों के लिए लिखें। जिगर मुरादाबादी के जरिए उनकी मुलाकात कराई गई प्रोड्यूसर ए आर कारदार से, लेकिन मजरू सुल्तानपुरी जी ने फिल्मों के लिए लिखने से इनकार कर दिया। कहा फिल्मों के लिए उनके मन में ज़्यादा जगह नहीं है, लेकिन जिगर मुरादाबादी ने उन्हें बहुत समझाया और कहा फिल्मों से अच्छे पैसे मिलेंगे, परिवार को पाल पोस सकोगे। उसके बाद जिगर मुरादाबादी जी ने नौशाद जी से उनको मिलाया। नौशाद जी ने एक तर्ज दी उन्हें और कहा इस तर्ज पे गीत लिखो। मजरू सुल्तानपुरी जी ने गीत लिखा, जब उसने गेसू बिखराए बादल आए झूम के, जब उसने गेसू बिखराए बादल आए झूम के। उसके बाद 1946 का साल था, फिल्म बन रही थी शाहजहां। फिल्म शाहजहां के लिए नौशाद जी ने साइन किया मजरू सुल्तानपुरी जी को गीतकार के रूप में। फिल्मी सफ़र शुरू हो गया और क्या धमाकेदार पहला ही सक्सेस मिला उन्हें। उन्होंने गीत लिखा, जब दिल ही टूट गया तो जीकर क्या करेंगे। आवाज़ दी केएल सहगल साहब ने, और केएल सहगल साहब को ये गीत इतना पसंद आया कि उन्होंने कहा कि जब मेरा जनाजा उठे तो ये गीत ज़रूर बनाना, बजाना। और ऐसा ही किया गया, सुनने में आया है। लेकिन एक गीत जो उनके शुरू के हिट गानों में से था शाहजहां के इस गाने के अलावा, वो था फिल्म सीआईडी का ये बेहतरीन गाना, जिसे आप सुन रहे हैं महक 2RRR 88.5 FM।

देवानंद साहब की फिल्म थी सीआईडी जिसका था ये बेहतरीन गाना. देवानंद साहब की एक और फिल्म थी आप समझ ही गए और उस फिल्म का नाम है 16वां साल और उसके गाने भी लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी साहब ने और उस फिल्म के गाने भी एक से एक बढ़कर मशहूर हुए थे जैसे कि इस कार्यक्रम के शुरू की धुन वाला गाना.

और वो दिल चाहे आवारा था चाहे कैसा भी था लेकिन सभी ने बहुत पसंद किया और फिर फिल्म आई तलाश ओपी रलन साहब बहुत ही बेहतरीन एक फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे और उन्होंने ये फिल्म बनाई थी तलाश और फिल्म बनाई थी राजेंद्र कुमार के साथ जिनको के जुबली कुमार कहा जाता था और इस फिल्म में राजेंद्र कुमार जी के साथ थीं शर्मिला टैगोर जी और दिग्गज एक्टर थे बलराज सहनी ओपी रलन साहब भी थे इसी फिल्म में और सबसे बेहतरीन स्टेज डांसर उस समय की जिन्हें आज आइटम सॉन्ग कहते हैं वो करने वाली हेलन और इस फिल्म का एक गाना था जो अत्यंत ही पॉपुलर हुआ था

कार्यक्रम आपके मनोरंजन के लिए पेश करता हूं मैं सुखदेव जसवाल. हर इतवार 2 से 4 बजे तक पेश करता हूं मैं. और कार्यक्रम अगर आपको पसंद आता हो तो अपने दोस्तों को जरूर बताइए ताकि वो भी आपकी पसंद को अपनी पसंद बना सके. और इस बीते सप्ताह क्या हुआ उसकी थोड़ी सी बात करते हैं. और बीते सप्ताह क्रिकेट में कुछ हलचल हुई. क्रिकेट में हलचल ये हुई कि भारत और इंग्लैंड, इंडिया एंड इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट शुरू हो गया. भारत ने पहली पारी में 471 रन बनाए और इंग्लैंड ने 49 ओवर में 209 रन बनाए 3 विकेट खोकर. और आज फिर मैच शुरू होगा, देखते हैं क्या होता है. लेकिन यहाँ केवल आपकी फरमाइश होती है और आपकी फरमाइश पर पेश है किशोर कुमार जी की आवाज़ में मजरू सुल्तानपुरी जी का गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत. और पसंद है शांति की. इसे सुनते हुए आप भी हमें फ़ोन करके बता सकते हैं कि आपकी पसंद क्या है. हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी पसंद आप तक लाने की.

0: Cars that roar your thing? Search eBay, Australia's number one online auto parts and accessories marketplace.
1: ये था बहुत ही प्यारा गाना, फिल्म थी इम्तिहान. और इस समय आजकल सिडनी में हो रहा है एक बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम सफल, जो अब से लेकर सितंबर तक चलेगा. बहुत लंबा कार्यक्रम है, लेकिन घबराइए नहीं, केवल वीकेंड्स पे है, तो आप वीकेंड्स पे इस कार्यक्रम सफल में भाग ले सकते हैं. कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर हैं केदार, और केदार हैं लाइन पर. केदार जी, महक में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
2: धन्यवाद सुखदेव जी, थैंक यू वेरी मच.
1: और कैसा रहा शुरुआत सफल का?
2: शुरुआत बहुत अच्छी रही. जैसे आपको मालूम है, 15 जून को हमारी पहली आर्ट एंड फोटोग्राफी कंपटीशन हुआ था. और यहाँ पे ईस्ट फूड में ब्रश फार्म, द हिस्टोरिक ब्रश फार्म हाउस, वहाँ पे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला हमें. 23 आर्टिस्ट इंक्लूडिंग फोटोग्राफर्स पार्टिसिपेटेड इन द कंपटीशन. तो इट इज गेटिंग बेटर एंड बेटर एवरी ईयर, क्योंकि हम ये जो कर रहे हैं 217 से कर रहे हैं हम लोग.
1: वेरी गुड.
2: तो ये आज की नहीं है, बट देखिए जब यू नो रिस्पांस अच्छी मिलती है एंड वी आर गिविंग प्लेटफॉर्म टू न्यू आर्टिस्ट, आई थिंक वी फील वेरी हैप्पी विद दैट.
1: ऑफ कोर्स. तो अब अगला स्टेप क्या है?
2: आपने जो बताया है कि 15 जून से लेके 5 सितंबर से ये सफल फेस्ट इज ऑन. नेक्स्ट कैटेगरी इज परफॉर्मेंस आर्ट.
1: ओके.
2: तो सिंगिंग, डांसिंग एंड इंस्ट्रूमेंटल की हम हर साल टैलेंट क्वेस्ट करते हैं. तो एवरीवन कैन पार्टिसिपेट. ये हो रहा है 5 जुलाई को, बिटवीन 9 o'clock टू 5 o'clock, नॉर्थ राइट स्कूल ऑफ आर्ट, कॉन्फ्रेंस रोड, नॉर्थ राइट.
1: ओके.
2: और वहाँ पे पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन सिंगिंग, dancing, we have solo singing, solo dancing, 12 years to 17 years.
1: Very good.
2: 12 years to 17 years and 18 years and above. Aur is baar humne kya kiya hai ki we have introduced group dancing as well, group of 5. So kafi matlab response aaya hai hame dance schools se.
1: Okay.
2: Again, yahan ji. To ye, and then instrumental, aajkal instrumental bhi, there are a lot of people who are, their sons and daughters are learning flute, या गिटार या जो भी है, यू नो दे आर वेरी, दैट्स व्हाई वी वांट टू गिव प्लेटफॉर्म टू यंग पीपल एज़ वेल. हाँ जी.
1: तो ये क्लासिकल है या पॉपुलर है या फोक है?
2: ओपन कैटेगरी है जी, यू नो ओपन कैटेगरी. एंड एवरी इवेंट हैज जजेस फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, सो इट्स अ फेयर बैलेंस. और देखिए एंट्रीज फॉर पब्लिक इज फ्री.
1: Okay.
2: You know, families can come, and North Ride School of Arts is it's got a lovely stage.
1: Okay.
2: 200-300 people can be accommodated. आप तो आए हुए हो last time as well.
1: जरूर. और इस बार भी आऊँगा.
2: हाँ जी, thank you sir. So nice of you know, we need you know support from people. You know, आप जैसे लोग, you know, you're giving us publicity. You know, for so many years, Sukhdev ji, really, really thankful to that.
1: You're welcome.
2: And yes, and we really appreciate, and we really would love to have you there and encourage our, you know, the whole community.
1: You're most welcome, and I will definitely try my best.
2: हाँ जी. और ये जो है इस सैटरडे है, तो आपकी मतलब संडे की क्लास नहीं होगी, तो
1: शो.
2: हाँ जी, हाँ जी.
1: That's very nice. तो एक बार फिर बता दीजिए place and time.
2: हाँ जी, ये जो है ये जुलाई में हमारी एक इवेंट है, which is the सफल फेस्ट परफॉर्मेंस कॉम्पिटिशन. ये है 5 जुलाई
1: को
2: है at the North Ride School of Arts, Cox's Road, North Ride.
1: Excellent.
2: और anyone wants to get some information, they can contact Kedar. Just if you don't mind, repeat my number.
1: Sure.
2: Mobile number.
1: Please go ahead.
2: 0452
1: yeah.
2: 401956.
1: Excellent.
2: Repeat again, 0452 401956.
1: Excellent.
2: Thank you so much for your time. As usual.
1: Thank you. Thank you, Kedarji, to come on the program and tell about all the details of Safal.
2: Thank you. We will meet again for the next month also we have.
1: Oh, definitely. maybe next week as well.
2: Haji. Okay. Thank you very much.
1: Thank you. Bye-bye. So, this is Kedar, who is organizing the Karyakram Safal, which is a competition of Gaane Ka, Dance Ka, 5 July, Northride School of Arts. और भारी गिनती में जाके सपोर्ट कीजिए। मजरू सुल्तानपुरी जी ने राज कपूर की एक फिल्म, यो तो राज कपूर की थी लेकिन नहीं भी थी, फिल्म थी धर्मकरम, और फिल्म धर्मकरम के लिए उन्होंने एक गाना लिखा था और इस गाने को संगीत में ढाला था आरडी बर्मन साहब ने, और गाना बहुत ही पॉपुलर हुआ था। पेश है आपके लिए सुधा की पसंद पर फिल्म धर्मकरम का ये बेहतरीन गाना महक 2RRR 88.5 FM पर।

तो कैसा लगा आपको ये बेहतरीन गाना? और अगला गाना जो आपके लिए लेकर आया हूँ मैं, वो है माही की पसंद का। और ये बेहतरीन गाना है एक क्लासिकल फिल्म का। क्लासिकल इसलिए कहूँगा कि आज भी जब हम इस फिल्म का नाम लेते हैं तो याद करते हैं उन दोस्तों को जो गरीब तो हैं लेकिन उनके दिल में भी सारे अरमान हैं, प्यार के अरमान हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के अरमान हैं, और इन्हीं अरमानों को लेकर वो गली गली घूम रहे हैं। और इस फिल्म के गीत लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी साहब ने। फिल्म थी दोस्ती, और फिल्म दोस्ती का संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने, और इस गाने की आवाज़ दी है रफ़ी साहब ने। क्या बेहतरीन आवाज़, क्या बेहतरीन गाना और क्या बेहतरीन संगीत। 02-9816-2777 हमारा नंबर।

और अगला फरमाइशी गाना है एक और बहुत ही सफल फिल्म और पसंद की हुई फिल्म, राजेश खन्ना की शुरू शुरू की फिल्में थीं ये, बहारों के सपने था नाम इस फिल्म का, और आशा पारिक जी थी इस फिल्म में और लता जी ने इस गाने में अपनी आवाज़ दी है, बहुत ही बेहतरीन गाना है। और इसे सुनते हुए 02-9816-2777 हमारा नंबर यहाँ स्टूडियो में, आजा पिया तो है प्यार तू।

0: तो बजकर 53 मिनट पर पेश हैं आपके लिए कुछ संदेश.
1: 101 Music, an Australian production music catalog of over 250,000 track titles to suit your audio production needs. Music to propel the stories you want to tell. Whether it's a local brand advertisement or underscoring a television series, 101 Music delivers emotional solutions through music. Go to www.101.audio, search catalogs to license the music you need. 101 Music is a proud sponsor of 2RRR.
2: Let Minuteman Press at Gladesville press your case with designing, printing and promotion with useful promotional products carrying your name and contact to attract prospects and have customers singing your name with brochures and flyers to relay key messages in an easy-to-digest format. Graphically appealing, carefully scripted and expertly printed. Yes, let 2RRR sponsor Minuteman Press press your case. For a free quote, go to minutemanpress.com.au or come on into Unit 4, Gladeview Business Park, 435 Victoria Road, Gladesville.
3: Are you a fan of the Master of Suspense, Alfred Hitchcock? Would you like to enjoy a special two-course lunch of delicious food, exciting raffles and worthwhile prizes? Well, here's your chance to do that. Associate Professor of Film at Sydney University, Dr. Bruce Isaacs, will be in conversation with the award-winning television director, Craig Anderson, as they dissect and discuss Alfred Hitchcock, his life and his movies. It's on Monday the 28th of July from 11 a.m. at Ryde Eastwood Leagues Club, 117 Rydale Road, West Ryde. The event is organised by the Ryde Lantern Club in support of Next Sense, formerly the Royal Institute for Deaf and Blind Children. For further information, call or text the Lantern Club President, Robert Anderson, on 0418 552 532 before Friday the 11th of July.
0: संदेशों के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है. महक 2RRR 88.5 FM पर आज 22 जून के इस कार्यक्रम में, जिसमें आपके लिए पेश कर रहा हूँ मजरूह सुल्तानपुरी जी के लिखे हुए गीत. मजरूह सुल्तानपुरी जी, जिनका जन्म हुआ उत्तर प्रदेश में 17 जून 1919 को सुल्तानपुर में, और इसी शहर के नाम पर उन्होंने अपना तखल्लुस रख लिया सुल्तानपुरी. और फिल्मों में आए तो धमाकेदार गाने, जब दिल ही टूट गया तो जीकर क्या करेंगे से शुरुआत की फिल्म शाहजहां के इस बेहतरीन गाने से, जिसमें संगीत दिया था नौशाद जी ने, और मौका दिया था मजरूह साहब को. और कहां से कहां पहुंच गए, 50s, 60s, 70s, सबके गाने लिखे उन्होंने. यहां तक कि जब जनरेशन चेंज हुई, जो 50s, 60s की जनरेशन थी, उसकी अगली जनरेशन आई, तब भी मजरूह सुल्तानपुरी जी ने अपना रंग नहीं खोया. उनका रंग वैसे का वैसा कायम रहा और धमाकेदार गीत लिखते रहे, जैसे कि आमिर खान की फिल्म कयामत से कयामत तक का ये बहुत ही धमाकेदार गाना

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है

जिया आमिर खान ने धूम मचा दी थी अपनी इस फिल्म से और धूम मच गई थी मजरूह सुल्तानपुरी जी के इस गाने से, लेकिन फिर आई एक और आमिर खान की फिल्म और फिल्म थी 1992 की जो जीता वही सिकंदर, और उसमें ये गाना था जिसको के लिखा था जाहिर है मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने, और आवाज़ दी थी उदित नारायण और साधना सरगम जी ने, और क्या आवाज़ें दी थी, और संगीत दिया था नई जनरेशन के म्यूज़िक डायरेक्टर जतिन ललित ने।

और नई जनरेशन के एक्टर सलमान खान और एक्ट्रेस मनीषा कोइराला कौन नहीं जानता, उनके लिए भी गीत लिखा मजरू सुल्तानपुरी साहब ने। फिल्म थी खामोशी। कविता कृष्णमूर्ति जी जो अगली जनरेशन की गायिका थी और कुमार सानू जो अगली जनरेशन के गायक थे, उन्होंने दी आवाज़ें इस गाने को। और इस फिल्म को आप जानते ही होंगे, बनाया था संजय लीला भंसाली ने। क्या फिल्म थी। जतिन ललित ने एक बार फिर इस फिल्म का बेहतरीन संगीत दिया था।

अगली जनरेशन के लिए एक और बेहतरीन गाना लिखा था मजरू सुल्तानपुरी साहब ने, और अगली जनरेशन में इस के कलाकारों में से इस फिल्म के कलाकार थे सलमान खान, उर्मिला मटोंडकर, और इस फिल्म का संगीत दिया था एक और अगली जनरेशन के म्यूज़िक डायरेक्टर अन्नू मलिक ने। लेकिन हमारी जनरेशन के गीत लेखक मजरूह सुल्तानपुरी गीत को लिखकर छा गए।

0: दो बजकर 17 मिनट हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में और अब समय है संदेशों का।
1: The home of the $5 taco.
2: Where?
1: At Calyrae Restaurant, Newtown, on Tuesdays, Thursdays, and Sundays. And you can wash them down with $12 cocktails between 5:30 and 7:30 p.m.
2: So what about Wednesdays?
1: Or half-price barbecue cauliflower wings.
2: And Thursdays?
1: In addition to the $5 tacos and $12 cocktails, there's half-price nachos. And not forgetting the fabulous $8 beers every day.
2: Calyrae, with its Mexican plant-based plates, offered up in a funky venue. It's so delicious and Instagrammable.
1: Station sponsor Calyrae Restaurant, 62 King Street at the city end of Newtown.
3: Concussion affects thousands of Australians every year. To discover why some recover well and others don't, the Australian Mild Traumatic Brain Injury Study, AUS-MTBI, is recruiting adults and children with recent concussion. The benefits of contributing to the study include a personalised recovery program and symptom tracker. Download the HeadCheck app, join AUS-MTBI and complete the study for a chance to win a Visa gift card.
4: Station sponsor.
5: It's winter now and lost or stray cats need help from the community to find their way home. If you find any stray cat, please feed it to keep it nearby. Then phone the World League for the Protection of Animals on 9817 4892. We can come to your premises and check for a microchip to return it to the owner, or if no microchip, to rehome it. Remember, animals feel hunger, thirst, heat, cold, pain, fear, and loneliness.
0: संदेशों के बाद आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ ट्यूटिपल आर 88.5 FM पर अपने मनपसंद कार्यक्रम महक में, जो आपके लिए पेश किया जाता है हर इतवार 2 से 4 बजे तक। पेश करता हूँ मैं सुखदेव जसवाल। कार्यक्रम आपको पसंद आता हो, अपने दोस्तों को जरूर बताइए ताकि वो भी आपकी पसंद को अपनी पसंद बना सकें। और कार्यक्रम में कुछ सुधार चाहते हो तो बहुत ही आसान है, आप ईमेल भेज सकते हैं mahakradio@yahoo.com। और अगर आप कार्यक्रम के समय फरमाइश करने में असमर्थ हैं तो आप ईमेल से भी फरमाइश कर सकते हैं। ईमेल है mahakradio@yahoo.com, MAHAK, महक की स्पेलिंग है MAHAK, रेडियो radio@yahoo.com। और अगला गाना पसंद किया है राज ने, और अब बारी है उस क्लासिकल फिल्म की जिसमें बेहतरीन कलाकार थे, मीना कुमारी जी थी, राजकुमार जी थे, और इन कलाकारों ने जो अदाकारी दिखाई थी और इस फिल्म की जो संगीत था नौशाद जी का, बहुत ही बेहतरीन था और गाने बहुत ही बेहतरीन थे, क्योंकि लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी साहब ने।

और कहाँ ये क्लासिकल म्यूज़िक पर आधारित उन्होंने गीत लिखा और बहुत ही सीरियस, और कहाँ एक मेलोडियस बेहतरीन गीत लिखा उन्होंने किशोर कुमार और मधुबाला जी की फिल्म के लिए, एक लड़की भीगी भागी सी, और फिल्म थी बहुत ही प्यारी फिल्म थी ये, चलती का नाम गाड़ी, और किशोर कुमार मधुबाला के अलावा किशोर जी के भाई अशोक कुमार और अनूप कुमार जी भी थे इस फिल्म में, और आपके लिए पेश कर रहा हूँ करण की पसंद पर।

इस बीते सप्ताह घोषणा हुई कि अगला जो सेंसस है वो 2026 में शुरू होगा. जाति गणना का मुद्दा फिर गर्मा गया. सरकार और विपक्ष के बीच इसको लेकर कई बार यूं तो विवाद हो चुका है, लेकिन इस घोषणा के साथ ये मुद्दा फिर उठ गया है. सोमवार को केंद्र ने देश की 16वीं जनगणना की घोषणा कर दी और उसकी अधिसूचना जारी कर दी. अक्टूबर 2026 में जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में, मार्च 2027 में भारत के अन्य राज्यों में जनगणना होगी. विपक्ष ने सवाल उठाया है कि इस घोषणा में जाति जनगणना की बात क्यों नहीं की गई? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना विचार बदल लिया है? होम मिनिस्टर अमित शाह ने इस पर बोलते हुए कहा कि जनगणना में पहली बार जाति जनगणना शामिल होगी. अब देखना है होगी कि नहीं. तो आइए चलें, जो होगा वो है आपकी फरमाइश यहाँ महक 2RRR 88.5 FM पर. आज मजरू सुल्तानपुरी जी के गानों के इस कार्यक्रम में, और ये फरमाइश है लता की, और इसे सुनते हुए हमारा नंबर है 02-9816-2777. फिल्म है यादों, माफ कीजिए, मेरे हमदम मेरे दोस्त, और आवाज़ है रफ़ी साहब की, और गीत मजरू सुल्तानपुरी साहब का.

नेशनल हेरल्ड में एक समाचार आया है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत को एक तरह से अंगूठा दिखाया है। पत्र इस पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रमोट कर दिए गए थे जनरल से फील्ड मार्शल असीम मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच के लिए दावत दी। कहा, मैंने लड़ाई रुकवाई, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने लड़ाई रुकवाई। मुझे पाकिस्तान प्यारा है, मेरे विचार में मोदी बढ़िया इंसान है। मैंने कल रात ही उनसे बात की, हम भारत के मोदी के साथ ट्रेड डील करने वाले हैं। ये व्यक्ति यानी मुनीर पाकिस्तान की ओर से लड़ाई रुकवाने में बहुत इत्तेफाक वाला यानी इम्पोर्टेंट पर्सन रहा। दूसरी तरफ से ये कहना था उनका। अब क्या समझें इसको, हमारी समझ में कुछ नहीं आता, आपकी समझ में शायद आ जाए। और लेकिन हमारी समझ में ये ज़रूर आता है कि आपकी फरमाइश हम ज़रूर सुना सकते हैं। और अगली फरमाइश है फिल्म तुमसे नहीं देखा, और फिल्म में थे शमी कपूर जी, गाने में आवाज़ है रफ़ी साहब की, और एक और आवाज़ है जिसे सुनते ही आप बिल्कुल अच्छी तरह से और जल्दी पहचान जाएंगे। तो पेश है आपके लिए, यूँ तो हमने लाख हंसी देखे हैं पर तुम सा नहीं देखा।

हाउसफुल 5 रिलीज हो गई है. अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन, जैकलीन फर्नांडिस, सोनम बाजवा और पता नहीं बहुत सारी कास्ट से भरपूर है ये फिल्म. और हंसी के गोलगप्पों से फिल्म भरपूर है और एक मर्डर मिस्ट्री है. जी हाँ, तो तैयार हो जाइए मर्डर मिस्ट्री और कॉमेडी के लिए, लेकिन सस्पेंस बहुत है. और अगला गाना जो है वो है मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ बेहतरीन गाना. और ये बेहतरीन गाना जो है मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ, ये है फिल्म पेइंग गेस्ट से, जिसमें नूतन जी और देवानंद साहब थे.

बातें कुछ इधर की कुछ उधर की। पुणे हवाई अड्डे पर स्पाइस जेट जो कि भारत की एक एयरलाइन है, स्पाइस जेट के पैसेंजर्स ने एयरलाइन के एक स्टाफ को जबरदस्ती फ्लाइट में उन्हें दिया गया खाना खाने को मजबूर का किया। उनकी शिकायत थी कि खाना बासी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उड़ीसा में भीड़ को संबोधित करते हुए बोले कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने मुझे G7 में कहा, यहाँ तक आए हो तो वॉशिंगटन आओ, साथ बैठकर खाना खाएंगे और बातें करेंगे। मैंने आदर से मना कर दिया और कहा कि मेरा महाप्रभु मुझे अपनी धरती पर बुला रहा है। आपका महाप्रभु यानी लोगों का महाप्रभु जगन्नाथ का प्यार मुझे इस धरती पर ले आया। कहाँ की बात कहाँ पहुँचा दी। अभिनेत्री और बिग बॉस पार्टिसिपेंट पवित्रा पुनिया ने कहा कि मंदिरों के मर्द पुजारी देवी माता के की जो मूर्ति है मंदिर में उसके कपड़े क्यों बदलते हैं, उन्हें किसने हक दिया, वो पुजारी हैं, पूजा करें। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवाई ने कहा एक केस की सुनवाई के दौरान, सरकारें जज ज्यूरी और जल्लाद नहीं बन सकती। बुलडोजर एक्शंस पर सख्त बयान दिया सीजीआई बीआर गवाई ने। अभिनेता और बिजनेसमैन विवेक ओबेरॉय ने कथित तौर पर दुबई में 1200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बनाई है। कैसे बनाते हैं ये लोग, यही जाने। और बातें कुछ हमारी कर्म भूमि की। ऑस्ट्रेलिया की शिट बॉक्स रैली, नाम कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन जो समझते हैं वो समझते हैं, क्योंकि ये हंसी मजाक में रखा गया है। ऑस्ट्रेलिया की शिट बॉक्स रैली में फिनलैंड के एम्बेसडर आर्टो हाफिया भाग लेंगे और उनकी खास बात ये है कि रेस में $1500 से कम की कार चलाएंगे, क्योंकि रेस में केवल $1500 से कम की कार ही चल सकती है। और 2004 की एक टोयोटा कैमरी में वो पर्थ से डार्विन जाएंगे। एनुअल वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड्स हुए हाल ही में, क्वांटास एयरवेज ने इस रीजन के एशिया पैसिफिक के 8 अवार्ड जीते। ऑस्ट्रेलिया पैसिफिक रीजन की बेस्ट एयरलाइन, बेस्ट बिजनेस क्लास, बेस्ट इकोनॉमी क्लास, बेस्ट प्रीमियम इकोनॉमी, बेस्ट केटरिंग और बहुत बेस्ट कैबिन क्रू। दुनिया में एवरीडे मिलियनर्स भी हैं, वो आप जैसे लोग होंगे जिनके पास के मकान हैं। तो ये दुनिया में एवरीडे मिलियनर्स जो हैं इनकी नेटवर्थ $1 million से होनी चाहिए या उससे थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। और दुनिया भर में ऐसे लोग जो हैं 60 मिलियन हैं, 60 मिलियन, इनमें से 2 मिलियन केवल ऑस्ट्रेलिया में हैं। और अगले सप्ताह करिश्मा कपूर, अमरीश पुरी, आर डी बर्मन साहब, टॉम ऑल्टर, रहमान साहब और मदन मोहन जी के जन्मदिन हैं। और मशहूर लोगों में पीवी नरसिम्हा राव जी जो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और एथलीट पीटी उषा, और बिजनेसमैन गौतम अडानी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह और लेखक बंकिम चंद्र जी के जन्मदिन हैं। और आने वाले सप्ताह में 27 तारीख को जगन्नाथ यात्रा है, जिसके लिए मोदी जी उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर की बात कर रहे थे। और इस्लामिक धर्म का नया साल शुरू होता है 27 जून को। और मैं एक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और एक दूसरे का ध्यान रखें। और अंतिम गाना जो आपके लिए छोड़े जा रहा हूं वो पसंद है डॉक्टर पारिक की और मेरी भी पसंद का ये
गाना है। अगले सप्ताह तक के लिए मुझे सुखदेव जसवाल को आके दीजिए। नमस्कार। माफ कीजिए इस थोड़ी गड़बड़ के लिए, कोशिश करता हूँ कि ये गड़बड़ हट जाए और ये अंतिम गाना आपके लिए बिना किसी डिस्टर्बेंस के सुनाई दे। तो एक बार फिर अगले सप्ताह तक के लिए मुझे सुखदेव जसवाल को आगे दीजिए। नमस्कार।